0: गुरु की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी नूं कीर्तन सरवण करवा रहे सन बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदयाल सिंह जी खडूर साहब वाले भाई साहब होरां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु रहमत करन, इस तरह अपने दर घर की सेवा लेंदे रहन। सो हुण समा होया है कथा विचार दा। पिछले कुछ दिनों तो बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी कीरतपुरी हैड ग्रंथी तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो वाले आप संगत की सेवा में हाजिर सन और गुरबाणी की पंचम गुरदेव सतगुरु अर्जन देव महाराज जी की पावन बाणी थिती गौड़ी महला पंजवां की लड़ीवार कथा आप जी सरवण करवा रहे सन। अज ज्ञानी जी होरां दा इस टूर का कैलगिरी की धरती से आखिरी दीवान है और चल रही कथा विचार भी अज संपूर्ण होगी। सो सतगुरु रहमत करन, इस तरह अपने दरकर की सेवा लेंदे रहन। आओ एकाग्रता सहित कथा सरवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: जब लौ नहीं पाग लेलार उदय, तब लौ प्रमते फिरते बहुत आयो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे,

दिन दिन चढ़ै सवाहया नानक होत न काट पूरन कबह न डोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़ै सवाहया नानक होत न काट पौड़ी पूरन मा पूरन प्रभ एक करण करण समरथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जाका हथ गुण निदान गोबिंद गुर किया जाका होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोहोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाय शरण जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझी है सिमरियो हर के चरण पतित उदाहरण अनाथ नाथ नानक प्रभ की शरण अकथ कथा नह बूझी है सिमरियो हर के चरण

जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक दसा पातशाहियां दी जागत जोत साहिबे कमाल हजूरे अनवर दो जहान वाली सतगुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जी गुरु बख्शी फतेह की सांझ पाओ। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इतिहास किसे कौम का मार्गदर्शन करता है। जिस कौम नू अपना इतिहास भुल जाए दुनिया के लोग उस कौम नू हमेशा लिए भुल जाते हैं। जिहड़ियां कौमां अपना विरसा अपना पिछोकड़ अपने बजुर्गों के पाए पूरने ते उन्हां दियां कुर्बानियां नू भुला देन दुनिया के नक्शे उपर हमेशा की तरह हमेशा हमेशा लई गलत अखर जिहड़ा स्लेट उपर लिखिया होवे उस अखर वांग मिट जांदियां ने। शायर कहिंदा है शीशा जद भी मैं वेखदा हां निहार के मूह अपना वेख कहिंदा शीशा पुकार के रहिंदे नहीं हरे ज्यो जड़ तो बिना बिरख कौमां भी नहीं ज्योंदियां विरसा विसार के। जिहड़ी कौम अपने इतिहास नूं याद रखे पढ़दी सुनदी गाउंदी ते प्रचारदी रहे ओ कौम हमेशा चढ़दी कला विच रहिंदी है। पहला उखण दी रगड़ नूं सहे सुरमा पिछों नैणा दी जोत आबाद रखे अपने हिरदे चो रब नूं लभ लैंदा सबर सत संतोख जो साध रखे ओने दूजे नूं अकल सिखावणी की। मूर्ख घर विच जिहड़ा फसाद रखे खिड़ी रहिंदी ओ पंछिया फुल वांगू जिहड़ी कौम इतिहास नूं याद रखे। सिख इतिहास कुर्बानियां नाल बहादरां दी सूरबीरता नाल भरिया पिया है। जदों असीं बहादरां दी गल करदे आं असीं सिरला सूरमियां दे काफले दी गल करदे आं ते साडे सामने जरनैलां दा एक ओ काफला आ जांदा है जिसने जान दी परवाह नहीं कीती जे कुर्बानी देण दी लोड़ पई शहादत दा जाम शांत रह के भी पीता और लड़दियां लड़दियां मैदान विच दुश्मन नूं यमपुरी पहुंचा के फिर खुद प्राण त्याग दिते। ते जदों किसे जाबर जालम ने कौम ते तशद्दद कीता जुल्म कीता उस पापी नूं धुरदी टिकट देण लग्यां भी योधियां ने देर नहीं लाई। तको जरा दिन दे दीवाना विच आप जी गुरुद्वारा सुधार लहर दा लड़ीवार इतिहास सरवण करदे आ रहे हो। इस दौरान आप जी ने गुरु के बाग दा मोर्चा किवें लगा केड़ियां घटनावां वापरियां वो सरवण कीता है। सतसंगत फिर भी मैं दोहरा दिया गुरु का बाग पंचम गुरुदेव सतगुरु अर्जन देव महाराज के नौवें पातशाह साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज की पावन चरण छो प्राप्त स्थान जेड़ा अमृतसर तो अजनाला वल जांदे आ लगभग 15 मील की दूरी ते सड़क तो जरा कहटमा है कुके वाली पिंड दे जू विच बनिया होया ये पावन स्थान है। इत्थे दो गुरुद्वारे ने पंजवें पातशाह ते नौवें पातशाह की याद अंदर। इत्थे महंत सुंदरदास का कब्जा सी ओ आयाश

श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का

श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हरगोबिंद नो सिमरो श्री हर राये, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरी है घर नौ निध आवै ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। गरीब नवाज दातार पातशाह अपने अपार बख्शिश कीती, दीवान दी संपूर्णता उपरंत पावन श्री मुखवाक बख्शिया। आप जी दे सुंदर स्वरूप दी टहल सेवा होई, सोहिला साहब जी दी बाणी दा जाप कीता गया। बाणी पढ़दिया सेवा करदिया आप जी दी हजूरी विच विचरदिया होईयां बेअंत प्रकार दीयां भुलां लई खिमा बख्शिश करनी, अगे तो समत बख्शनी। ऐस वक्त आप जी के पावन चरणा विच सेवादार संगत हाजिर है। आप जी अपने सुंदर आसना उपर विराजमान हो के आराम फरमाओ, सेवकां नूं खुशियां बख्शो। सेई प्यारे मेल जिन्हां मिलिया, तेरा नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

देग तेग पंथ की राज करेगा झूलते निशान रहे झूलते निशान रहे लागते दीवान रहे बोले सोनिहाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

प्रहलाद जान तुद राख लए हर जियो, हर नाखस मार पचाया। भगता दी सदा तू रखदा हर जियो,

हर नाखस मार पचाया, गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मन मुख परम पुलाया। हर जी एह तेरी वडियाई,

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियान पा लख हो हे ता एक ना चलै नाल केव सचियारा होइए केव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हउमै कह ना कोए गावै को तान हुवै किसै तान।

गावै को साज करे तन खेह, गावै को जी लै फिर देह, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देदा दे लै दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मे हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, भाखिया भाव अपार, आखह मंगह देह देह, दात करे दातार, फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार, मुहाओ के बोलन बोलिया जित सुन धरे।

ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾ ਕੀਆ ਗੱਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤ ਸਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਨ ਤ੍ਰਿਨ ਕਹਿਤ ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਪੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਮੇ ਨਮਸਤਸਤਰੰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ
नमस्तस्त देवै नमस्तंग अपेवै नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सोबनमे नमो सर्ब गौने नमो सर्ब पौने नमो सर्ब रंगे नमो सर्ब भंगे नमो काल काले नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अबरने नमस्तंग अमरने नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कीर्तारंग नमो सर्वतंदे नमोस्त अबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्बाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद त्वै प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अबर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंद है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबाह है अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौने अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ते स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ते बेपूते कलंकं बिना कलंके स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद्ध कर्ता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अचेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्त तामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात शांद अगाधे अबाधे अनंदे स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ते निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं
नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपट शांत त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छांद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रेसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा हुए फैलो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हुन है जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेवना जान ही जेह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बेहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व बिसवर च्यो स्वयं भव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जान ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाक है नेत पाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवहि बहुचित मद पार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अन भौ प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अब अपंग गात्मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा भार नाडै अन दंड बाडै चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्कर करता चतर चक्कर हरता चतर चक्कर दाने चतर चक्कर जाने चतर चक्कर वरते चतर चक्कर भरती चतर चक्कर पाले चतर चक्कर काले चतर चक्कर पासे चतर चक्कर वासे चतर चक्कर मानिया चतर चक्कर दानिया चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना परमंग ना पितरै ना करमंग ना काये अजन्मंग अजाये ना चित्तरै ना मित्रै परे है पवित्रै प्रथिसै अधिसै अदृश्य अकृसै
ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥਤੇ ਕਿ ਆ ਛਿਜ ਦੇਸੈ ਕਿ ਆ ਭਿਜ ਭੇਸੈ ਕਿ ਆ ਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕਿ ਆ ਭੰਜ ਭਰਮੈ ਕਿ ਆ ਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕਿ ਆ ਦਿੱਤ ਸੋਕੈ ਕਿ ਅਵਧੂਤ ਬਰਨੈ ਕਿ ਬਿਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕਿ ਰਾਜੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੰ ਤੁਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸੂਕ ਬਰਨੈ ਕਿ ਸਰਬਾ ਅਪਰਨੈ ਕਿ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛਤਰੰ ਛਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਰੂਪੈ ਕਿ ਅਨਭਉ ਅਨੂਪੈ ਕਿ ਆਦਿ ਅਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਭੇਵ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਰੰਗ ਬਿਹੀਨੈ ਕਿ ਏਕੈ ਅਧੀਨੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰਜਾਕੈ ਰਹੀਮੈ ਰਿਹਾਕੈ ਕਿ ਪਾਕ ਬੇਐਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫਬੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦੇਹਾਂਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਗਾਉਣੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਉਣੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਰਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਸਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੀਨੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਲੀਨੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਜਾਹੋ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਹੋ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਕਾਲੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਪਾਲੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਕਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਰਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਸੋਖੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਪੋਖੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਤਰਾਣੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਥਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਨੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਇੰਦਰੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਚੰਦਰੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ ਕਿ ਪਰਮੰ ਭੀਮੈ ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕਿ ਹੁਸਨੁਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈ ਗਨੀਮੁਲ ਸਿਕਸਤੈ ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੈ ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈ ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾਨੈ ਤਮੀਜੁਲ ਤਮਾਮੈ ਰਜੂਅਲ ਨਿਧਾਨੈ ਹਰੀਫੁਲ ਅਜੀਮੈ ਰਜਾਇਕ ਯਕੀਨੈ ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਬਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੋ ਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓਅੰਗ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੈ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਬਾਧੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰਗ ਸਰਬ ਭਾਗੇ ਸੁ ਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੈ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਛਿਜ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪਰਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ ਬਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਬਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਭੈ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਧੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਧੰਧ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਅਭਗਤ ਹੈ ਬਿਰਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਦੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਟਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਭ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਅਜਾਤ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਤਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ ਪਰਮਾਥੰ ਪਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ
अगाध स्वरूपे निर्बाध बेभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पोतरै ना पुत्रै ना सत्रै ना मित्रै ना ताता ना माता ना जाता ना पाता निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्वै प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांद है के राज कर हिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रिजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बेहेस्तुल निवास है के सरबुल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईश है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है के जुर्रत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो बेपूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनांग है के अमितो अपंग है मद भार छंद त्वै प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर परभंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एक सदाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन थट अपार आदीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वंकार है सर्ब पास्या है सर्ब नास्या है करुणाकर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पारते पार है करुणाकार है अजपा जप है अथपा थाप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणाकृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है विश्वंग पर है करुणालय है निरिप नायक है सर्व पायक है भाव भंजन है अर गंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कार है हरता हार है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बास है जस के जस है पुजंग पर्यात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सात रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेपूते
अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुतर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बिपूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व

अंतर्गत होके सत्संग जी नाम नु सुनना करना जियो नाव चक्कर ते सुन सकते हो हिरदा चक्कर जिथे दिल की धड़कन है दिल की धड़कन नाल सुन सकते हो कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आती है उथे सुन सकते हो किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान नहीं लेके जाना जियो जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे आ उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जियो नाल दी नाल अंतरगत नाम सुनना शब्दां नूं भी सरवण करना जिन्हां प्राणियां नूं नाम नहीं सुनदा उन्होंने सास ग्रास अंतर्गत सिमन विच ध्यान रखना जियो सवास अंदर नूं आउंदा वाहे फील करना सवास बाहर नूं जांदा गुरु फील करना इस तरह सास ग्रास सिमरन करदे रहना जियो इस तरह आपां उड़दे बहिंदे कम ते काम कारज करदे सुणदे अपने इस दे विच ध्यान रखना हुंदा है सास ग्रास सिमरन विच वध तों वध लाहा लेना हुंदा जियो नेत्र सारे ने कृपा करके बंद रखने जियो।

फतहि राजान राज पानान पहान दीवान दीव उपमा महान करोड़ां ही खंडां ब्रह्मंडां दे मालक सतगुरु सभे सांझीवालता दा उपदेश बख्शिश करन वाले निमाण्यों के मान नितान्यों के तान नियोट्यों की ओट नियासरियों की आसरी निगत्यों की गत निपत्यों की पत नितिरियों की तिहर चवर शतर अति तख्त जी दे मालक दसा ही पातशाहियां दे भगत साहिबाना दे पट साहिबाना दे गुरसिखां दे प्रतख स्वरूप कुल मानवता नूं धीरज बख्शिश करन वाले दीना बंधु भगत वशल कृपा निधान

0: इतनी हाजरी प्रबंध कर ले जी, भुला चुका जी क्यों बख्शनी दे जी। बुलाओ फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: आप संगतां नूं गुरबाणी दा कीर्तन सरवण करा रहे सन भाई दविंदर सिंह जी, सिद्धी फतेहगढ़ साहब वालियां दा रागी जत्था, जिन्हां ने एक दो महीने इस अस्थान ते हाजरी भरी है। अज इन्हां दा लास्ट दीवान सी, तिन्हां दा संगतां वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद। सच्चे पातशाह कृपा करन, इसे तरह ही गुरु संगतां नूं कीर्तन दे राही गुरु चरणां दे नाल जुड़दे रहन। हुण समा कथा दा है, भाई गुरदास जी दे किवित सवैयां विचों कथा सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन कहो नानक हर भज मना जिह बिद जल को मीन बिखियन स्यो काहि रचियो निमख न हो ही उदास कहो नानक भज हर मना परै न जम की फास तरना पो यो ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक भज हर मना अहुद जात है बीत बिरद भयो।

जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए, कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरते पूरन हो वह काम। झूठे मान कहा करे।

हरा। बाल छुट क्यों बंधन परे कछु न हो तो पाए, कहो नानक अब ओट हार गाज ज्यो हो सहाय।

जिह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहार होए। मुंदावनी महला पंजवा थाल विच तन वस्तु पईओ सत संतोख विचार।

राग एक संग पंच बरंगन संग लपह अठ नंदन प्रथम राग भैरव वह करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुन्याकी गा वह बंगली पुनस लिखी की पही बारी ए भैरव की पाचव नारी पंचम।

चौथा पहर गोण करी यर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पाचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उबारा खौखट औ पौरा नद गाय अष्ट माल कौशक संग लाय उन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट।

विछड़ी जीवात्मा नु बख्शिश करना। इस संसार की यात्रा दौरान भाई बलकार सिंह होरां पासों जाने अणजाने विच होईयां भुलां दी मुआफी बख्शनी और अगे तो सदीवी तौर ते अपने चरणा विच निवास बख्शना, आवागमन दे चक्रां तो मुक्ति बख्शनी।

आप जी लई सुंदर वस्त्र भेंट कीते गए ने, आप जी नू शोभनीक हो रहे हन। पातशाह पंचामृत कड़ा प्रसाद हाजिर है, कृपा करो सीत प्रसाद संगत नू बख्शो, आप जी भोग लाओ। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी।

हर जन केवड़ भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै त्रिपता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास।

तुम्हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेव है तुद जी,

पंक जो मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गले आ रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूरख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवां।

हर राया कौ नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो हो शर्मा। जाप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जानिया हर राया।

सारा केह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो संकर इकैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव।

खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाडे खेत। सो कह टल गुर सेवी है एहन इस सहज सुभाए। दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है।

है प्यारा आपे कार लाया, ज्यों आप चलाए त्यों चली है प्यारे, ज्यों हार प्रा

नानक वजह वजाया ज्यों आप चलाए त्यों चलिए प्यारे ज्यों हर प्रभ मेरे पाया आपे जंती जंत है प्यारा जन नानक वजह वजाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।